0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो, कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भूलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7:00 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:00 से सुनिए समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10:00 से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। 11:00 से रंग तरंग। 12:00 से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1:00 का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2:00 से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3:00 से। 4:00 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने। संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:00 से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6:00 से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। 7:00 से जय माला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं 8:00 से हवा महल में। लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी सुनिए।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित वीजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता,
2: हाँ, ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियां आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज्यादा रहा
1: कि बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी, वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
2: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
2: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसमें
1: जी।
2: अपने आप में ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिस जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है
1: जी,
2: वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया, तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई,
1: हाँ।
2: विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो

0: फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे खत्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश
0: नहीं। एग्जैक्टली
1: जी जी।
0: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको। एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे।
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये जितना साउथ इंडिया में है।
1: जी,
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं। राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: जयरामन, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में,
0: सुब्रमण्यम जी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वीजी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल, जरूर सुनवाई।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: कल भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब कुछ ही पलों के बाद।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: हसरत जयपुरी के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: इंजीनियरिंग मा पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के डी टू डी माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
2: केजेआईटी सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
1: विजिट अवर वेबसाइट kgit.org टुडे।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: શ્રોતા મિત્રો, આપે ટ્યુન કરી છે વિવિધ ભારતીનું વડોદરા કેન્દ્ર. થોડી જોરમાં સાંભળીશું ગુજરાતીમાં સમાચાર.
3: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર સંસ્કૃતિ.

0: 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त प्रसारित।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
4: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी के बोल पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
2: अब सिर्फ 10 रूपए के सैशे पैक में भी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हम है राही प्यार के, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: कुमार की आवाजें जुगनू फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
5: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
5: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
4: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
6: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
7: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की

0: तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का

0: निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे

0: नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग ढाई घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला। तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्य गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की ये पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम, जय जय वंदे मातरम।

0: मातरम।
1: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

0: इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
0: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
2: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
0: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
2: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
0: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को

0: पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
1: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के एक क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
0: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
1: हितवार्ता ने लिखा,
0: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
1: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
0: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविन्द्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया। पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।
0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी। अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरद हस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: दांडिया बाजार वडोदरा।
1: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी।
0: ये है आर के ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
2: स्वागत है आपका चित्रलोक कार्यक्रम में।

डोमिनिक सेजो, जॉय मेंडोला, माफ कीजिएगा लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेजो की आवाजों में आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से ये गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। भाई वाकई हम पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं कि भाई ये मौका अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही खुशी होगी, या ये व्यक्ति अगर आ जाए या ये चीज मुझे मिल जाए। और जब वो चीजें, वो मौके और वे व्यक्ति हमें मिल भी जाते हैं तो फिर हम किसी और चीज के इंतजार में लग जाते हैं कि वो चीजें जब मिल जाएंगी तो हम खुश होंगे। तो इस तरह से खुशी को हम इंतजार करते रहते हैं, खुशी का कि किसी खास चीज के मिलने पर हम खुश होंगे, और उसके मिलने पर भी हम उतने खुश नहीं होते और सोचते हैं कि अब और क्या जिससे हमें मिलेगी खुशी। तो क्या हमने भी इस तरह से अपनी जिंदगी को एक प्रतीक्षारत जीवन में बदल दिया है? सोचिए इस पर और सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

मोहित चौहान और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, राजेश शेखर ने इसे लिखा, कृष्णा का संगीत। भाई वाकई जिंदगी में कई बार जो चीजें मिलती हैं हम उससे खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असफलताओं, निराशाओं और उदासियों का दौर जिंदगी में आता ही है। लेकिन इन परिस्थितियों से निकलने का जब हम हौसला करते हैं तो वो जो चीज है वो हमें अनोखी शक्ति देती है। कई बार स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ होता है तो इससे भी बहुत सी परेशानियां रहती हैं और लगता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे वक्त में अगर एक अच्छी सलाह हमें मिले तो क्या ही फायदा हो। तो कुछ ऐसा ही संदेश आइए सुनते हैं।

0: अरे पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में राउडी राठौर फिल्म का गीत आपने सुना, समीर के बोल साजिद वाजिद का संकेत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: श्रोता मित्रों, विविध भारती नो वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। वडनेर का ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवाना 8:45 थई छे। वडोदरामां सौभाग्यना दागीना तो फक्त वडनेरका ज्वेलर्स ना ज। वडनेरका ज्वेलर्स ब्रह्मपुरी दांड्या बाजार वडोदरा।
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाव छे तो डिप्लोमा BE के D2D माटे बेस्ट ऑप्शन छे। KJ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
5: KJIT सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
4: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।
6: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज।

0: तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है।

एजेंट विनोद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम और रिजवान, शादाब साबरी और अल्तमश फरीदी की आवाजों में, नीलेश मिश्रा के बोलते, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और आपको बता दें कि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर।

0: 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त प्रसारित।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: इरशाद कामिल के बोल आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में। रॉकस्टार फिल्म के इस गीत में संगीत A.R. रहमान का। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई

0: रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: चिलर पार्टी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, अरमान मलिक और साथियों की आवाजें, नितेश तिवारी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: श्रोता मित्रों, विविध भारती नो वडोदरा केन्द्र आप सांभळी रह्या छो। सारा गणदेविकर ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवारना 9 वाग्या छे। शुकननु सोनू तो सारा गणदेविकरनु ज, सारानु सोनू सुख शांति अने समृद्धिनु सोनू। सारा गणदेविकर ज्वेलर्स, दांडिया बजार अने वागोडिया रोड, वडोदरा।
2: आ कार्यक्रमना प्रायोजक छे अशोका द ग्रेट, एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरानो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।

या श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल ही में श्री शम्या का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत।
1: आ कार्यक्रम ना प्रायोजक हता अशोकाद ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन वडोदरा नो आधुनिक शोरूम नवरंग सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: श्रोता मित्रों, विविध भारती नो वडोदरा केन्द्र आप सांभळी रह्या छो। पूजा प्लस टाइम अत्यारे सवारना 9:30 थई छे। मात्र मंगल मुहूर्त नक्की करो, दुलेराजा ने अमे सजावीशुं। पधारो अमारा दुलेराजा डिपार्टमेंट मां, पूजा प्लस रावपुरा वडोदरा।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के बाद।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जवां दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहां से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहां तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहां तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों, इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई, अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव।
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल।

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर।
1: आज के फनकार।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त प्रसारित।
1: ओछा व्याज मा लोन जोइए ए पण एप थी, वाह वसाणो।
2: अजाण्या एप थी बचो,
3: आरबीआई कहे छे
2: जानकार बनो सतर्क रहो।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: केजीआईटी सावली, ધોરણ 12 સાયન્સ પછી એન્જિનિયરિંગ અભ્યાસ માટેનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ કેજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી।
7: હેલો વિદ્યાર્થી, કોણ વાત કરો છો?
8: હરે કૃષ્ણ।
7: હરે કૃષ્ણ કહાં સે?
8: યે વડોદરા।
7: વડોદરા સે તો હરે કૃષ્ણજી હિન્દી મેં બાત કરેંગે, ગુજરાતી મેં?
8: હા હિન્દી મેં।
7: ઠીક હે, બતાઈએ હરે કૃષ્ણજી।
8: एक्चुअली मैं कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा था।
7: हाँ।
8: बीच में काफी शीतल जी से भी बहुत बात हुई है।
7: अच्छा।
8: और किरण सर से भी बहुत बात हुई है
7: जी। तो फिर क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद आपने लगा?
8: हाँ, बीच में लॉन्ग ब्रेक हुआ है और आज मैंने कॉल किया।
7: तो कहाँ चले गए थे, यहीं पर थे या बाहर चले गए थे?
8: थोड़ा काम में बिजी था।
7: अच्छा, अरे इतना काम में क्यों बिजी हो जाते हो? अरे कृष्णा जी की हमारी बात नहीं हो पाती।
8: एक्चुअली मेरे को ये बात शेयर करनी थी ऑन एयर ऐप की।
7: हाँ।
8: ये ऑन एयर ऐप है जो वो बहुत ही अच्छा।

0: फैसिलिटी है.
1: सही बात है।
0: क्या बोलते हैं, वी कैन हियर, मतलब पूरे इंडिया में से हम कहीं के भी स्टेशन सुन सकते हैं.
1: पूरे इंडिया में नहीं, हरे कृष्ण जी, पूरे वर्ल्ड में
0: हाँ
1: सुन
0: नहीं,
1: सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: मतलब,
1: भारत में जो भी ऑल इंडिया रेडियो के जो केंद्र स्टेशन
0: हाँ
1: है वो सभी आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप
0: हाँ
1: में।
0: हाँ
1: सही
0: हाँ
1: बात है।
0: हाँ
1: तो हरे कृष्ण जी, आपको कौन सा गाना सुनवाए आज?
0: गाना तो एक्चुअली सोच कर रखा नहीं था, तो वही सुना देना. क्या बोलते हैं, चुरा लिया है, वही अच्छा लग, वो भी सुनने में अच्छा लगता है
1: चुरा लिया है
0: तुमने.
1: तुमने जो दिल को।
0: हाँ हाँ वही सुना देना.
1: ठीक है, तो अरे कृष्ण जी, क्या करते हैं आप?
0: एक्चुअली आई एम अ टीचर,
1: ओके,
0: 11th 12th साइंस मैथ्स पढ़ाता हूँ.
1: तो साइंस में है आप।
0: हाँ.
1: अच्छा, तो हरे कृष्ण जी, हमको ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 12th की एग्जाम दी है, तो मैथ्स लेके अगर आगे पढ़े तो कोई फ्यूचर है क्या उनका?
0: काफी बहुत सारी फील्ड्स हैं एक्चुअली.
1: अच्छा, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ जा सके वो लोग, कॉलेज में वो फील्ड पसंद कर सके?
0: मैंने फील्ड्स है एक्चुअली, और उसमें आके काफी कुछ कर सकते हैं. इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं.
1: ठीक है, हरे कृष्ण जी, दोबारा फोन करिएगा, अभी बहुत
0: हाँ हाँ
1: लंबा
0: हाँ
1: टाइम मत खींच
0: अच्छा
1: लीजिएगा, और आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकतानी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी। अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देशनु ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकासना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वासना, विकासना, जन कल्याणना।
2: सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, शुकरनु सोनू तो सारा गणदेवीकरनु ज, सारानु सोनू सुख शांति अने समृद्धिनु सोनू। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, दंडिया बाजार अने वागोडिया रोड, वडोदरा।
3: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: मित्रों, आप सांभळी रह्या छो कार्यक्रम फिल्म संकेत, ते साथे आपणे वात करी रह्या छे वर्ल्ड सिकल सेल डे नी, अवेरनेस डे। हवे आपणे वात करी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नी, योगा रिलेटेड। सावचेती पण एटली ज राखवानी के कसरत धीमे अने आरामथी करीए, चक्कर आवे, श्वास चढ़े अथवा अस्वस्थता थाय तो तरत बंद करीए। गंभीर सिकल सेल रोग धरावता लोकोए डॉक्टरनी सलाहथी ज नवी कसरत शुरू करवी। आ कसरतनो सिकल सेल रोगने ठीक करती नथी, परंतु श्वास अने सामान्य स्वास्थ्य सुधारवामां मदद करी शके छे। आओ आगळनું ગીત સાંભળીએ ફિલ્મ ન્યુયોર્કમાંથી સુની સુનિધિ ચૌહાણના સ્વરમાં।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी

0: इंथेल रोथांगपुरी ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रूपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रूपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा हुआ।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नो वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
4: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के D2D माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
5: KGIT सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
4: विजिट अवर वेबसाइट KGIT.org टुडे।
0: बेटा दाळ मां

0: खानी जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनू शहर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

माता है, रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं

0: बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफर में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो है वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं।

जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा कैफे आजमी, देशभक्ति कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज प्रेम धवन, सुगम और विविध मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं, सब अपनी जगह महान थे। सब किसी एक को पसंद करना कठिन है, और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं, बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी। कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े, और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे वे हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं। एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है, उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा, और इसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत के कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है? ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत से नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के। आहा, कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेर तारक घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए रुकश दीवदार के, गाली चाहिए गुलाब की बगीचे ये बहार की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। जी बिल्कुल। कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें एक हैं उसकी हजार हैं। जी ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है। जी बिल्कुल, हमें भी। हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है। जी बिल्कुल, हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं, उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है। अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्ज़ा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं, वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं।

हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं, और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद

वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप जरूर पहुंचाइए अपनी अनुभूतियां। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियां, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। अनेरी गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूं कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है, और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा। कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से। बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा और बताइए साहिर लुधियानवी की कोई शेर, शायरी या कोई कविता।

0: बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी, कल और आएंगी नगमाए खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लाइन हमारे श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बात है, होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही और भी कई सारे
1: आकाशवाणी समाचार हेमांगिनी सोनारा वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रधानमंत्री विकास भारती रोजगार योजना हेठ 2400 करोड़ रूपया प्रोत्साहनों वितरण करते। संयुक्त राष्ट्र में भारते कहूं, जम्मू काश्मीर भारत अभिन्न अविभाज्य अंग छे, हमेशा रहते। भारत एलएनजी टैंकर दिशा हॉर्मुज समुद्र धुनी पसार कर गुजरात दहेज बंदरे पहुंचू। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थाए रविवार योजना नीट यूजी पुनः परीक्षा में बेसनारा उम्मीदवारों सत्तावार व्हाट्सअप चेनल शुरू कर। फीफा विश्वकप में मेक्सिको दक्षिण कोरिया ने हरावी नॉकआउट राउंड में पहुंचू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नवी दिल्ली में पीएम विकास भारत रोजगार योजना हेठ 2400 करोड़ रूपया प्रोत्साहनों वितरण करते। उल्लेखनीय छे कि आ योजना देशभर में 15 लाख नौकरीओं सर्जन थयु। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया जणाव्यु कि ऑगस्ट 2025 में शुरू थे आ योजना हेठ औपचारिक कार्यबल में 63 लाख थी वधु कामदारों उमराया छे, जेमा लगभग 30% महिलाओ छे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्यप्रदेश ओमकारेश्वर में आंतरराष्ट्रीय सिकलसेल दिवस निमित्ते योजनारा कार्यक्रम में उपस्थित रहा था। सभा ने संबोधता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए राष्ट्रीय सिकलसेल एनेमिया नाबूदी मिशन हेठ राज्य सरकार की सिद्धियों की प्रशंसा कर 2047 पहला सिकलसेल रोग नाबूद थशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम दरमियान राष्ट्रपति मुर्मूए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया नाबूदी मिशन 2047 हेठ आयोजित एक विशेष प्रदर्शन की मुलाकात लीधी। तेमनी मुलाकात आगामी तबक्का में राष्ट्रपति ओडिशा रैरंगपुर जशे, जहां तेओ अनेक विकास प्रोजेक्ट उद्घाटन करशे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 3 दिवस लद्दाख की मुलाकाते छे। मुलाकात दरमियान उपराष्ट्रपति आवतीकाले लुकुंग गाम की मुलाकात लेशे, जहां तेओ स्थानिक स्वसहाय जूथों साथे बातचीत करशे। तेओ वाइब्रंट विलेज कार्यक्रम हेठ सरहदी विस्तार में चाली रहेला विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा करशे, बाद में युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि आपशे। श्री राधाकृष्णन 21 जूने लेह में आंतरराष्ट्रीय योग दिवस उजवणी में भाग लेशे। युवानों, सशस्त्र दलों कर्मचारी और विविध संगठनों सभ्यों योग द्वारा सर्वांगी स्वास्थ्य सुखा कारीना संदेश ने प्रोत्साहन आपवा माटेना योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने तेमना जन्मदिवस पर अभिनंदन पाठव्या छे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी तेमना सारा स्वास्थ्य और लांबा आयुष्य की शुभेच्छा पाठवी छे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाए पण श्री गांधी ने जन्मदिवस की शुभेच्छा पाठवी छे। जम्मू और काश्मीर अंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 62वां सत्र में पाकिस्तान द्वारा करवामां आवेला आरोपों ने भारते नकारी काढ़ा और कहूं कि जम्मू और काश्मीर भारत अभिन्न और अविभाज्य अंग छे अने हमेशा रहेशे। संयुक्त राष्ट्र में भारत कायमी मिशन प्रथम सचिव अनुपमा सिंघे यूएन मानवाधिकार परिषद 62वां सत्र में पाकिस्तान पर घरेलू पड़कारों ध्यान हटावा आतंकवाद ने सतत समर्थन आपवा प्रचार उपयोग करने आरोप मूक्यो हतो। आरोप लगाव्यों के पाकिस्तान पीओके में थई रहेली घटनाओं पर ध्यान हटावानो प्रयास करी रह्यु छे, ज्यां ताजेतर में विरोध अने अशांति वधी छे। भारते आ परिषद में पाकिस्तान की आकरी टीका करता सिंधु जल संधि ने

फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था, और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने, तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना

0: લીઝંડી આપશે. અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના હેઠળ 2400 કરોડ રૂપિયાના પ્રોત્સાહનોનું વિતરણ કરશે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતે કહ્યું, જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનું અભિન્ન અને અવિભાજ્ય અંગ છે, હંમેશા રહેશે. ભારતનું એલએનજી ટેન્કર દિશા હોર્મુઝ સામુદ્ર ધુની પસાર કરી ગુજરાતના દહેજ બંદરે પહોંચ્યું. રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા સંસ્થાએ રવિવારે યોજાનારી નીટ યુજી પુનઃ પરીક્ષામાં બેસનારા ઉમેદવારો માટે સત્તાવાર વોટ્સએપ ચેનલ શરૂ કરી અને ફિફા વિશ્વકપમાં મેક્સિકો દક્ષિણ કોરિયાને હરાવી નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું. આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા. હવે પછી આ 2:30 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો.
1: और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंधा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है. ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ. हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड्स, 22 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं. हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं. और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है. इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहां तक पहुंचाना, विश्व स्तर तक पहुंचाना, वह भी बड़ी बात है. और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफर सुहाना कहाँ होगा. योगेश जी, माया गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्यबद्ध करने वाले कैफी आजमी जी. सच बात है, कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सके. चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से. और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है और इस गीत को आपको सुनना है और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा. वैसे मैं आपको बता दूं ये गीतकार गोपालदास नीरज है. तो गोपालदास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है.

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा, कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियां आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मेरे को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है, इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिलके बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियानी की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहां पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी जबरदस्त फैन हुई कि

उन्होंने मुझे जहरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं। परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है। कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफी की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं। पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के जमाने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लिखने के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहां सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारी गौशोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपालदास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो उस पर 4 बजे तक बैठा रहा नीरज, लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां हमारी ना समझा यहां कोई मजरू, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा मांगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूं तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है। हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया। बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे,

और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर, पंडित नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया, परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज का, आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हो तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की ये पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: हितवार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
0: मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविन्द्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।

बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया, पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला।

0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी, अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरदहस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम, एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति

0: ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
1: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे

0: और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
2: Our position on Indus Water Treaty is well known.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विवेक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल है और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दस्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत ऐसे चंद तपन राम तत राम तत राम तत।

लहरी मृदंग धनका झक झक झक झक नगिन देश देश सगन नदादा किट झक झक झक झगन झक झक सगन का सगन का किट झक झक सगन का जी सगन नदा साधा किट झक झगन का साधन का।

大腿呀腿呀腿大腿呀腿呀腿大腿呀腿呀腿

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कॉन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, बिजली पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधारते भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12 साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली.
1: हेलो सहेली.
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे.
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी. मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से.
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं. बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है.
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस.
0: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है.
1: बहुत ज्यादा.
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना.
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवल अच्छे लगते हैं, जैसे गोदान है, गवन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है. मैंने लगभग 8-10 तो नॉवल पढ़े ही पढ़े हैं. और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती है, मेरी सहेली है.
0: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं. बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं. बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं, जिसमें हमें
1: पढ़ना
0: बहुत...
1: मतलब लगभग तो सभी कुछ छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे. कॉमिक्स का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं.
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने. जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था, और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं. आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको? आज के जमाने के, जो आज के दौर के गीत हैं वो पसंद करती हैं?
1: आजकल के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खासतौर से लता जी से.
0: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
1: बहुत सारे हैं.
0: आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं वो बताइए.
1: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंग हिना, हिना फिल्म का गाना.
0: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए हैं अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहां जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है। दरअसल ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं डम डम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह ये सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरी तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधरी रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।
2: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
3: हेलो सहेली।
2: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
3: जी, मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
2: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
2: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
3: अभी। हाँ, छोड़ा है मैंने अभी। मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
2: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
3: हाँ हाँ जी।
2: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
3: अभी वो 12th में है।
2: 12th में है
3: जी, 12th में है अभी।
2: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
3: नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं। उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
2: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
3: जी बिल्कुल।
2: तो आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
3: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
2: इसके अलावा और
3: गिटार सीखने लगी हूँ।
2: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
3: जी, अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
2: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं। तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
3: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
2: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
3: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
2: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
3: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
2: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: बुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वही तहसील खुरई पे साइड है बुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस।
0: तो आपका जो गांव है वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यहीं पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने की?
1: नहीं मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं?
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव सीवर के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो सीवर है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहानी जी, आप कहाँ रहती हैं, किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ,
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है।

0: एसिडिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते हैं।
1: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
0: हाँ,
1: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
1: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687088, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जग जाए, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इटले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने। एकदम सिंपल,
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
4: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
4: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
5: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाव छे तो डिप्लोमा बीई के डी टू डी माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली,
6: केजेआईटी सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
5: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।
7: बरसों से दिल

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांसी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहां जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई है।

तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि एक ढाई तीन किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी मां नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में मां की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर मां मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही है। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

0: बेटा दाढ़ माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूखो कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना।

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभालने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने एटले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादळी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

अनाया सी अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर न करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

0: कौन चौंक गया, क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे? अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई। बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखिए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा जारी।

0: मनिया।
1: अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही

जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वा

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इटले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
3: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
3: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
2: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
4: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
5: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
6: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
2: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
6: एटले?
2: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखिए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
4: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मजारी।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूम घट तो जरा ओढ़ो, अहमान।

0: जवानो कहा अब तुम हो जवान मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जग्या है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने एटले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास माँ फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनू वडोदरा केन्द्र। श्रोता मित्रों सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतोनो कार्यक्रम चित्रलोक जेना प्रायोजक छे
3: केजे इंस्टीट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
4: डिप्लोमा बीई तथा D2D एंजीनियरिंग ना अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प जेमा मळे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी खात्री।
5: KJIT सावली।
6: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन वडोदरा नो आधुनिक शोरूम नवरंग सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
2: MK फर्निचर 5 माळ नो भव्य शोरूम प्रतापनगर ब्रिज नीचे वडोदरा।
7: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों जेना प्रायोजक छे
6: आर्क ब्लाइंड्स शिवाकृति बिल्डिंग दांडिया बाजार वडोदरा।
8: सेहत आपकी सुरक्षा हमारी अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी
6: ये है आर.के. ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
9: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
10: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
9: बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे। लीलो डब्बो भीना कचरा माटे वादड़ी सूका कचरा माटे लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
11: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
12: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
11: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
9: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
11: एटले
9: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखिए रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
11: आपनु शहर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुधाकर शर्मा का लिखा ये गीत सुना। आवाजें के सुनिधि चौहान और साथियों की थी। फिल्म का नाम था हमराज।
1: नसीर तो
2: छेल्ला 12 वर्ष थी, अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व नी। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरान, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी। અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ। આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ। 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના।
3: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
4: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
3: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
5: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
6: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
5: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
3: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
5: एटले?
3: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
5: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नो वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मा फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मा सफाई नु अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मा ज नाखिए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा जारी।
5: और किशोर कुमार की फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म सफर का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की है।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें

0: किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म सफर का गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं फैज अनवर का लिखा गीत। डब्बू मलिक का संगीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जग्या है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने। एकदम सिंपल,
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास,
1: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में। समाचारों के बाद कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव

0: मैं आज देख रहा हूं यहां पर और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गांग-यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए तराने, नए पुराने, इस कार्यक्रम का शेष भाग सुनिए।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था एक नजर। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी, जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
3: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
5: पूजा प्लस, आप सांभळी रह्या छो विविध भारतीनो वडोदरा केंद्र। पूजा प्लस, मात्र मंगल मुहूर्त नक्की करो, दुल्हे राजा ने अमे सजावीशू, पधारो अमारा दुल्हे राजा डिपार्टमेंट मां। पूजा प्लस, रावपुरा वडोदरा।
0: फिल्म का नाम है चाइना गेट, गीतकार समीर हैं और संगीतकार अनु मलिक हैं।

0: चाइना गेट।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जग्या है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इटले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फिल्म का नाम है हिना, गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम गुलदस्ता। हवा महल में आज रात्रि 8 हम आपको सुनवाएंगे झलकी पूरा तत्व के तत्व, लेखिका नाजनीन, निर्देशिका चंद्रप्रभा भटनागर। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9 आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर केंद्रित होगा। छाया गीत कार्यक्रम रात्रि 10 प्रसारित होगा, आलेख और स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 225वां भाग प्रसारित होगा। संगीत सरिता कार्यक्रम कल सुबह 6:45 और कल संध्या 6:45 पर प्रसारित होगा। आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार, कलाकार वायलिन वादक पंडित SL कंडारा, इसका भाग 3 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता है मनीषा जैन। हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत कल सुबह 7:00 पर हम हैं राही प्यार के।

त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दोपहर 2:00। आलेख और स्वर मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

आज की फनकार ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 9:30 पर और कल रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर केंद्रित होगा। कल सुबह 10:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी का पुनः प्रसारण होगा। कहानी ज्वालामुखी, कहानीकार निवेदिता श्रीवास्तव, संपादन सहायक काजल भद्रगे और प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 11:30 पर मैटिनी शो के अंतर्गत योग पर विशेष कार्यक्रम योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से यूनुस खान की बातचीत प्रसारित होगी। यादों की महफिल कार्यक्रम दोपहर 12:05 पर और कल दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे 2:30 पर कल दोपहर 3:00 फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। कल दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक मृत्यु प्राण भाग एक, मूल बंगला नाटक आलोक भट्टाचार्य का और हिंदी अनुवाद दीप नारायण मिठोलिया का। इसके निर्देशक होंगे सुदर्शन कुमार। कल दोपहर बाद 4:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम होगा। इसमें कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 3 प्रसारित होगा। छायागीत का पुनः प्रसारण संध्या 5:00 और 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। कल संध्या 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता और विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा कल संध्या 7:00। ये कार्यक्रम अभिनेता अमरीश पुरी प्रस्तुत करेंगे। कल संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे जिज्ञासा। रात्रि 8:00 हवा महल में कल सुनिएगा सुनो कहानी में स्वामिनी भाग 3। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये स्वामिनी, वाचन स्वर ममता सिंह का और प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। चित्रलोक कल रात्रि 8:15 पर और कल रात्रि 9:00 आपके लिए। कल रात्रि 10:00 छाया गीत का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। जरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित विजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे

0: भी अच्छा काम किया, दाता जी
1: डीके दाता, हाँ,
0: ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
0: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियां आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज्यादा रहा
1: कि बहुत बड़ा योगदान है,
0: योगदान रहा
1: जी जी।
0: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
0: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी उनके इंस्ट्रूमेंट में थी, वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है तो, लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
0: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
0: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इसपे
1: जी।
0: अपने आप में ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिस जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है
1: जी,
0: वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे खत्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश?
0: एग्जैक्टली
1: जी जी।
0: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये जितना साउथ इंडिया में है
1: जी।
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: जयरामन, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में,
0: सुब्रमण्यम जी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी, जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित VG जोग साहब की आप बात कर रहे हैं तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल जरूर सुनवाए।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम जयमाला, बस कुछ ही पलों में।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

गुलशन बाबरा का लिखा गीत था ये और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे फिल्म जंजीर के लिए।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: ये स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी फिल्म अभिमान के लिए।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था।

0: एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये स्वर है आशा भोंसले और किशोर कुमार के फिल्म का नाम शरीफ बदमाश, रचना आनंद बख्शी की, धुन राहुल देव बर्मन की।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह आवाज़ें लता मंगेशकर की फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाज़नीन और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का।
1: दुकान लग गई?
2: हाँ, दुकान तो लगा दी मैंने। तू चाय लाया?
1: हाँ उस्ताद।
2: अरे तो देना,
1: बड़ी गर्म है। बड़ी फर्स्ट क्लास चाय बनवा कर लाया हूँ।
3: ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या सवाल?
4: अरे मुंशी जी, आइए आइए।
3: क्या? अबे ये क्या है साहब?
1: कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे
3: ही ऐसे ही। अबे आधा फुटपाथ घेर रखा है और कहता कुछ नहीं। अब ये कैसा खटरा फैला रखा? ये क्या?
1: दरअसल हम लोग पुराना माल बेच रहे हैं
3: जी। पुराना माल? समझा बेटे,
4: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं।
3: डेकोरेशन? अबे ये क्या होता है?
1: डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े।
2: अबे तुम कुछ देर अपनी चोंच बंद रखो।
1: ठीक है
4: मुंशी जी, ये चीजें ड्राइंग रूम वगैरह में सजाने के काम आते हैं।
3: अच्छा तो बेटा तू क्या मुझे नया समझता है?
2: अजी नहीं।
3: अबे 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, 24 साल से। अरे लोग भूतान सीन सीन कैलेंडर घर पे सजाते हैं या ये कबाड़ है?
2: कबाड़? क्या कह रहे हो मुंशी जी?
4: अरे भाई ये पुराने जमाने की अनमोल चीजें हैं।
3: चल चल, अच्छा अनमोल ही सही है, मगर कौन रखेगा अपने वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में?
4: अब लीजिए। अरे अमीर लोग और कौन है?
2: अरे दूसरों पर रब मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं भाई,
1: ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची रहे।
4: अब आप इस घड़े को देखिए, देख रहे हैं ना?
3: पुराना है
4: जी। हाँ, देखने में मामूली है, मगर हजारों साल पुराना है।
3: बे क्या कहा, हजारों साल?
4: जी हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला था।
3: ये क्या?
1: और इस संदूक को पहचानते
3: हैं?
1: इससे वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने साथ लाया था।
3: अच्छा अच्छा, सुन
4: जी,
3: बहुत बुकराजी छाड़ चुके हैं, आप सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ,
1: सीधे
3: ठीक कर दूंगा।
4: हाँ भाई,
3: ये डंडा देखा है? अबे ये डंडा देखा है?
4: जी हाँ।
3: ये चंगेज खां का है, चंगेज खां का, जिससे उसने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। लेकिन अब मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगा। हाँ बता देता हूँ
4: मुंशी जी।

0: ये वाकई चंगे इस खान का डंडा है।
1: ऐसा कीजिए मुंशी जी,
2: क्या
1: ये डंडा हम लोगों को
2: क्या?
1: दे दीजिए।
0: जी हाँ, हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे।
2: मैं कहता हूँ जी, उठाओ ये, उठाओ उबक तुबक, उठाओ यहाँ से।
1: मुंशी जी,
2: अरे सरकार ने फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाया है, न कि एक कबाड़ फैलाने के लिए। बड़ा दुकान, बड़ा दुकान, मैं कहता हूँ बढ़ाओ। चलो कम हो यहाँ, कम हो जाओ, कम हो जाओ।
1: मैं कहता हूँ देखिए, नहीं हमको, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे।
2: अबे खाल में रह, खाल में बहुत चबड़ चबड़ न कर। नेतागिरी छाड़ी ना तो एक ही ढंडे में बेजा खोपड़ी से निकाल कर वो पार्क में वहाँ भेज दूंगा। समझे?
3: जाने दीजिए दारोगा जी, बच्चा है अभी।
2: हाँ बेटा, मक्खन लगा रहा है, दारोगा कहकर मेरा ओहदा बढ़ा रहा। अबे तू क्या समझता, अबे क्या समझता है, तेरे इतना कहने में मैं पसी जाऊंगा।
3: अरे दारोगा, दारोगा क्या, आप तो हमारे लिए थानेदार से भी बढ़कर है। क्यों चले है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार है, माई बाप है।
2: बात बात बात, बकवास बंद। ज्यादा जवानी मक्खन बाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
4: ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, जिसे को समझा देना।
3: हाँ बिल्कुल,
4: मुझसे एक ढंग से जरा बात किया करें।
3: जी हाँ बिल्कुल, और क्या। अरे मैं कहता हूँ तू आदमी है या शामियाने का बाप है? अबे क्या जरूरत थी उसे आईटी की?
1: क्या बताए, क्या बताए, उसने उसने कानून बघारा तो मुझे गुस्सा आ गया।
3: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा ही।
1: भूल हो गई, अब से ऐसी पंगे बाजी से दूर।
3: शाबाश, तरक्की करोगे आगे चलकर बेटा, अगर मेरी बात मानोगे।
1: ये समस्या तो हल हो
3: गई,
1: अब समस्या है ग्राहकों की भीड़ जुटाने की।
3: अरे चेले वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
1: बतौलेबाजी?
3: अबे हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जलूल किस्से कहानियाँ सुनाना पड़ता है ना, क्या समझे?
1: समझ गया, समझ गया। और जब भीड़ जमा हो जाए तो असली धंधे पर आ जाओ।
3: अबे चेले हो जा तैयार है। तो मेहरबान, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दस मलुका कह गए सबके दादा। जिसको काला कई पहर वो जिए, और जुल्फ नागिन का डसा मांग कर पानी न पिए। तो जाने वाले देख ले मुँह अपना फेर कर, अरे राह में हम भी खड़े हैं रास्ते को फेर कर। हाँ तो मेहरबान साहेबान कद्रदान, लगा कर सुनिए ध्यान। कहते हैं कि किसी जमाने में थे एक हकीम लुकमान, जिनकी थी एक बोलती हुई दवाओं की दुकान। लेकिन मेहरबान, ना तो अब रहे हकीम लुकमान और न रही उनकी वो बोलती हुई दुकान। लड़के बैठ जा। मगर मेहरबान कदरदान, आपके इस हसीन शहर में खुल गई अनमोल चीजों की एक बेहतरीन दुकान।
1: गुरु, क्या कह रहे हो, इस कबाड़ को अनमोल बता रहे हो?
0: अभी चीले, तू है अभी बच्चा, अकल का है कच्चा, तू अपनी चोंच बंद रख। अबे जिसे तू कबाड़ कह रहा है वो है बहुत कीमती और नायाब।
3: अबे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं होगा कामयाब।
5: अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर ये है क्या?
3: इस पर गौर फरमाइए, देखने में है ये मिट्टी का ढेला, मगर इसमें छिपी है इतिहास की तीन जंगें। जी हाँ, ये पानीपत के मैदान की मिट्टी है मेहरबान। इसकी सुर्ख रंगत इस बात का सबूत है कि इस पर न जाने कितने सूरमाओं ने अपना लहू बहाया।
5: ऐसी मिट्टी लखनऊ में हर
2: जगह। टीवी फॉर्म की दुकान के पास जाओ, मिट्टी को बोलो, अरे पीछे लाल ऐसी मिट्टी मिल जाएगी।
3: और साहिबान, साहिबान जरा इस पैजामे पे निगाह डालिए।
2: पैजामा?
3: ये वही पैजामा है जिसे महामूर्ख शेख चिल्ली
6: पहनाते। पैजामा छोड़ो, इस प्याले का इतिहास तो बताओ।
0: अभी अभी बताता हूँ चिले।
3: हाँ तो

0: साहिबान, ये देखिए ये प्याला है, ये देख रहे ना आप,
1: देख रहा
0: हूँ, है तो मामूली मगर है खूनी
1: खूनी।
0: जी हाँ, इसी प्याले में मशहूर फिलोसफर सुकरात को जहर दिया गया था।
2: अमा नखास के खरीदे हुए गूदड़ और कहा
0: सुनिए तो साहिबान, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मैं मेहरबान कदरदान तेरे
3: सारे ग्राहक चले गए, पल्ले का 2 रुपए भी पुलिस वाला ले गया, अब क्या होगा उस्ताद?
0: घबरा मत चेले,
4: वो देख अभिनंदर थी एक उधर
0: हीरो की कद्र करने वाला जौहरी आ रहा है।
4: उस्ताद देखने में तो नवाब नजर आ रहा है।
0: अब बेटे अपना तजुर्बा कह रहा है कि ये जरूर कुछ न कुछ कर
4: रहा, कुछ भी हो उस्ताद इसे गिरा लो, बिल्कुल जानने न पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए हुजूर, आदाब है
5: आदाब है आदाब है। भाई क्या बेच रहे हो मियां?
0: किबला एक से एक नायाब चीजें हैं, ये देखिए
5: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तो
0: अरे हजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए, सबकी सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती है।
5: फरमाया तारीखी हैसियत?
0: जी हाँ जी हाँ, जैसे कि हजूर अब ये देखिए ये पर्दा, मुलाजा फरमाइए मुलाजा फरमाइए, अपने वक्त की मशहूर तबायफ उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी।
5: उमराव जान, हे हे हे, क्या पूछते हो हाले दिले जार है अदा, आवाजगी में हमने जमाने की सैर की।
0: आदाब आदाब है, क्या बात है,
5: बहुत खूब।
2: और बन्ना परवर, ये रही आमों की गुठलियाँ।
5: गुठलियाँ की गुठलियाँ?
0: गुठलियाँ हुजूर,
5: क्या ये भी तारीखी हैसियत रखती है?
0: जी जी हुजूर, अरे इन्हें नहीं जानते आप, इन्हें चचा गालिब ने चूस चूस कर फेंका था।
5: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मिर्जा गालिब आमों को तो बड़े शौकीन थे।
2: और हुजूर इस चिराग को देखिए,
5: लगता है ये अलाउद्दीन का चिराग है।
0: बजा फरमाया हुजूर, ये वही चिराग है।
5: अरे तो मियां जरा घिसकर जिन को बुलाइए तो।
2: हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जिन तो ना आ सकेगा।
5: क्यों भाई क्यों?
0: क्या है नवाब साहब कि जिन ने इस चिराग को छोड़कर 10 किलोवाट के बल्ब में बसेरा कर लिया है।
5: अच्छा अच्छा, वो क्या चीज है?
2: वो पानी भरने वाली मशक है।
5: माशाल्लाह भाई, इसको तारीख की किस अजीब हस्ती ने इस्तेमाल किया था?
0: लीजिए, अरे आप नहीं जानते हुजूर, ये मशक उस भिश्ती की है जिसने एक बार मोहल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुजूर
5: याद आया, हाँ, हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
2: जी हाँ, जी हाँ, और बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे।
5: माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मुझे तो ये मशक बहुत पसंद आई, इस नायाब शय को मैं अपने गरीब खाने की जीनत बनाऊंगा।
0: हुजूर हुजूर,
5: भाई क्या कीमत है इसकी?
0: अब आपसे मोल भाव क्या करना हुजूर, सिर्फ 50 रुपए इनायत फरमाइए।
5: अमां 50 रुपए? बस इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत? ये लीजिए थैली संभालिए।
0: शुक्रिया,
5: 50 से भी ज्यादा की रकम है।
0: शुक्रिया हुजूर शुक्रिया।
5: अच्छा भाई तो मैं चलता
0: हूँ,
5: खुदा हाफिज।
0: मैं देखा चले, मैं न कहता था कि हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है।
2: सही कह रहे हो उस्ताद, पूरी थैली ही थमा गया,
0: काफी भारी है, माल भी बहुत होगा।
4: उस्ताद मैं खोल कर तो देखो।
0: हाँ अभी खोलता हूँ। ये लो, अरे
2: ये क्या
0: चमड़े

0: के टुकड़े।
1: चमड़े के टुकड़े नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
0: क्या? चमड़े के सिक्के?
1: उसी भिस्ती के दौर के सिक्के।
0: अबे मर गए, यानी के धोखा।
1: उस्ताद धोखा क्यों गुरु, ड्राइंग रूम सजाने के लिए तारी

पुरातत्व के तत्व अभी आप सुन रहे थे नाज़रीन की लिखी ये झलकी, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: श्रोता मित्रों, 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनु वडोदरा केन्द्र। श्रोता मित्रों, सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
2: केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
1: डिप्लोमा बीई तथा डी2डी इंजीनियरिंग ना अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प, जेमा मळे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी खात्री।
2: केजेआईटी सावली। अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
1: एम के फर्निचर, 5 माड़ नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज नीचे, वडोदरा।
3: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों, जेना प्रायोजक छे
2: आरके ब्लाइंड्स, शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा।
3: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी।
2: ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
4: हर रोज सुबह 7 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनुमलिक का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों

0: उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy, हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष

0: 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country.
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंची।

0: पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की के मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत, स्वर जसपाल सिंह का, और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंधी।
1: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही गाया हुआ, फिल्म का नाम है महाचोर। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था लैला मजनू। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चरस में। शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर

मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहां से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहां तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी
1: का जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहां तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: तो सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव।
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल।

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: छायागीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।
1: जब मोहब्बत जवान हो

साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमां, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन

रात हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आंखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हें कदमों की आहट लाई है।

मोहब्बत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में झुक जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है, जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

दुनिया ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न

अनियाम मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।